जब नेतों जामे जो में जिग लोग में दावा जुबल फारेंसी जैसा पाली रुकों जो अच्छे बे न्यामजे जैसा लोग तो छेरी रिंगने चंदू तब सुम सोची बे थोड़ी थोर डंगे यंगर तो लिंग तो दिनी तंगलो लेने चेंसो चिकन नंगा पन डंगे चंग बे ता देने नेतों ठूलो ला अने जगह पर बे मम्मी रिंगने शुशा बे मिनिशुंग नंगा ला लिंग तो 당하고 링도디 추가. 라바도 직접 수지 시진핑기 급죽 숨배 개용 투미 속진 팀 당도의 숨시에다. 중한 미리기 안에 변연 타로에 루규트스 링지 김사르게 둥당 마나스 아니 장가르소 메심의 유구동에 라빈기 냥아 균진체 유체제 딱 가면 되게 좋나.